गीते गायने खड़ा अजित रत्नायक। पदमालाव नयनसेन वन्नी नायक गायनय सुजीव वीरसिंह संगीते सपेनवा नालक अंजन कुमार मे गीतेट।